0: है लाइका गोल्ड। साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान, देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
1: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
2: Four beers, please, garçon!
1: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
3: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
4: Relax, I've booked the Uber already.
3: But how? My roaming isn't even working yet.
4: I switched to Simsy before we left London.
3: Simsy? Since when are you the tech expert?
4: Since I decided I want a stress-free holiday.
5: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
6: T's and C's apply.
7: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर

में उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई हैं, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा भुआई हैं। हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म न कोए, नानक हुक्मे जे बुझे ताहू मैं कह न कोए। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वडियाईयां चार, गावे को विद्या विखम विचार। गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लै फिर दे। गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर। कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट। देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाई खाए। हुक्मी हुक्म चलाए राव, नानक विकसै वे परवाह। साचा साहेब साच ना।

सो मैं विसर ना जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना

होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए मन्ने मग ना चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध।

वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोहन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहावे।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एको वेस एक दूजी बोलख हुए लख हुए लखवीस लख लख।

सार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथे पाए नान गया जापै जाए धर्म

0: इज लाइक अ गोल्ड
1: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट travelhubworld.com
3: Dad,
4: what's wrong, beta?
3: The Indian rupee has skyrocketed, and it's the best time to send money to daddy in India.
4: I will run down to the money exchange now.
3: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app, and you'll get a fast service right from your phone.
4: Oi, bale bale! I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
3: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
5: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
6: Lights on. Shutters up, staff ready.
5: But today's customers don't start on the high street.
6: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
5: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
6: They walk into your competitors.
5: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
6: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
7: UK singers, this is your moment. For the first time, ZTV's iconic singing reality show, Sare Gamapa, is holding auditions in London. If you're 18 and over and can sing in Hindi, register now. Auditions take place Sunday, the 26th of July at St. James Court at the Taj Hotel, London. Your voice could be the next big discovery.
8: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com टीज एंड सीज अप्लाई
9: हॉन्सलो अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास
10: परंपरा भी
11: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे राज कचौरी मिठाई और बहुत कुछ आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हाउस लो TW3 1QT कॉल करें 07487-687-885
0: Like a Radio Network Proud Hospitality Partner Ragasan This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk.
12: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games, and a bit of Ye Yavo only on Leica Gold. Gold.

0: कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344 24 आवर लाइन।
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
2: हेरल्ड न्यू वर्ल्ड ऑफ इको friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalog today. Call on 0208-507-7900 or download the catalog from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
3: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara. Performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio partner Leica Radio Network.
4: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
5: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 0730099823।
6: Looking for great value on quality flour? Head to your nearest quality food store today. Falcon Chakki Atta 10kg is now available for an amazing price of just £7.99. Perfect for soft rotis, chapatis and everyday cooking. Don't miss this fantastic offer. Falcon Chakki Atta 10kg is only £7.99 exclusively at quality food stores.
7: Discover Malta and Gozo with a Twin Center Island Escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll Protected.

0: Kajal's Morning Mantra, presented by Mantra Holidays, your friendly holiday partner for UK, Europe and other destinations. For your memorable holidays according to your taste and budget, call 0203-773-633 to book your dream holiday.
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
2: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
3: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: At all protected.
3: Visit travelhubworld.com.
4: Life doesn't always send a warning. A family matter, a property issue, an immigration concern, or a business dispute. When things feel complicated, Rack Law solicitors bring clarity, care, and trusted legal support. From family, property, and immigration to corporate law, your matters, our expertise. Call Rack Law solicitors on 0203-345-2000 or visit racklaw.co.uk.
2: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271

0: कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410. दैट्स 85748410.
2: साउथ हॉल ट्रेवल. Protected.
3: राइस खरीदने का परफेक्ट टाइम आ गया है. बाय 20 kg टिल्डा बासमती राइस एंड गेट 1.5 kg गुलाब केनियन टी एब्सोल्युटली फ्री. मिक्स एंड मैच टिल्डा बासमती पैक्स टू मेक अप टू 20 kgs, यानी कि 4 टाइम्स 5 kg या 2 टाइम्स 10 kg या 1 टाइम्स 20 kg. दिस स्पेशल ऑफर इज अवेलेबल एट ऑल क्वालिटी फूड स्टोर्स. हरी, ऑफर एंड्स व्हाइल स्टॉक्स लास्ट. क्वालिटी फूड्स, क्वालिटी और वैल्यू दोनों एक साथ.
4: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस.
5: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड. अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड. दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
2: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
1: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
2: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
1: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस.
2: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
3: राइस खरीदने का परफेक्ट टाइम आ गया है. बाय 20 kg टिल्डे बासमती राइस एंड गेट 1.5 kg गुलाब केनियन टी एब्सोल्युटली फ्री. मिक्स एंड मैच टिल्डे बासमती पैक्स टू मेक अप टू 20 kgs, यानी के 4 टाइम्स 5 kg या 2 टाइम्स 10 kg या 1 टाइम्स 20 kg. दिस स्पेशल ऑफर इज अवेलेबल एट ऑल क्वालिटी फूड स्टोर्स. हरी, ऑफर एंड्स व्हाइल स्टॉक्स लास्ट. क्वालिटी फूड्स, क्वालिटी और वैल्यू दोनों एक साथ.
4: sonatours.co.uk. 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of July and get 600 off. Call Sonatours on 0208-951-0111.
5: Hello London, the wait is over. Kalyan Jewelers invites you to the grand opening of our spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park this July 31st. Kalyan Jewelers, also at Belgrave Road, Leicester.
6: Like a goal. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर. एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइकागोल्ड.com पे.
7: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: इज लाइक अ गोल्ड। ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: विजिट ट्रेवल हब world.com।
2: भजन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है। Backstage Siblings perform live for the very first time in the UK. Join the pioneers of Bhajan Jamming on Friday the 9th and Saturday the 10th of October at SKLPC Northolt. Ek Sham Soulful Music, Devotion aur Energy ke naam. Tickets book kijiye on sklpc.com/BSS. Exclusive radio partners Leica Radio Network.
3: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
4: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
3: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
4: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट। कॉल 01923-227274। बुक योर टेबल टुडे।
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
6: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 at 24 hour line.
7: Looking for great value on quality flour? Head to your nearest quality food store today. Falcon Chakki Atta 10kg is now available for an amazing price of just £7.99. Perfect for soft rotis, chapatis and everyday cooking. Don't miss this fantastic offer. Falcon Chakki Atta 10kg is only £7.99 exclusively at quality food stores.

गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मनोरंजन की दुनिया में, मनोरंजन प्रोग्राम ऑन लाइका गोल्ड रेडियो। लाइका रेडियो नेटवर्क पर पुराने गीतों का खजाना। माय नेम इज रवि शर्मा। दोपहर बाद 1 बजे तक मैं ये कार्यक्रम लेकर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आप सब की ओर से पहले धन्यवाद कहूँ काजल को। शी विल बी बैक टुमारो मॉर्निंग।

0: डायरी खुल गई है और कुछ लाइनें भाई आपको समर्पित करना चाहता हूँ प्रोग्राम को शुरू करते हुए। और वो लाइनें जो पहले भी आप सुन चुके होंगे, फिर एक दरख्वास्त, एक रिक्वेस्ट कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। धरा यानी धरती, पूरी दुनिया भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। यूं तो एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: TravelHub.
2: At all protected.
1: Leica. Forgotten memories refreshed. Leica Gold.
0: पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और यूं तो एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है।

0: हो गया, लव यू हो गया भाई। ये आदान प्रदान उस उम्र में बहुत होता है, बाद में जा करके लोग इसकी परिभाषा ही बदल लेते हैं। राइट, शुरुआत होती है बैक टू बैक संगीत से और दो गीत हमने परोसे, आपको पसंद आए होंगे। पहला गीत तुम अगर साथ देने का वादा करो, रवीश जी की बनाई धुन पर आवाज़ महेंद्र कपूर की थी एंड दैट वॉज टेकन फ्रॉम द 1967 फिल्म हमराज। और भाई उसके बाद हमराज और भी बनी फिल्में, तो एक टाइटल से कई कई बन जाती हैं। दूसरा गीत जो आपने सुना ये हमने फिल्म अकलमंद से लिया था, अकलमंद, और ये गा रहे थे किशोर कुमार और एस जानकी। अब भाई पहले हम पाउंड रेट बताते हैं और याद दिलाते हैं आपको कि 10:30 बजे आप सुनेंगे आज के प्रमुख समाचार। राइट नाउ लेट्स फाइंड आउट द पाउंड्स वैल्यू इन इंडियन रुपीस।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK. याद दिला रहे हैं आपको भाई, रेट अच्छा चल रहा है। अगर आप अपनों को पैसे भिजवाना चाहते हैं भारत में तो नोट कीजिए, टुडे दे आर गिविंग 128.6 इंडियन रुपीस फॉर वन पाउंड, 128.60 रुपये का रेट चल रहा है। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके की किसी भी ब्रांच में जाकर के वहां से ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑनलाइन यू कैन ट्रांसफर और यू कैन ट्रांसफर वाया यूजिंग द योनो SBI UK mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Like a gold.
3: This is a national alert from Flixbus. We'd like to express a few things because it's time to move on from that ex.
4: Goodbye.
3: But don't let your plans get derailed. No, choose Flixbus for comfortable, affordable travel. Go on, give all your plans the light green. Switch to Flixbus.

0: स्वर्गीय मुकेश जी का दर्द भरा स्वर और भाई गीत की शब्दावली भी ऐसी है।
1: जुबान पे दर्द,
0: आज बृहस्पतिवार है, हमारे श्रोताओं की ये इच्छा रहती है कि कुछ एक दर्द भरे गीत आज के प्रोग्राम की शोभा बने। बाहर आने से पहले खिजां चली आई।

0: मर्यादा फिल्म से लिया था हमने ये गीत, और भाई इस गीत को सुनवाने के बाद याद दिला दें आपको, हमसे थोड़ी देर बाद आज के प्रमुख समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a gold.
0: Like a radio network. अब आप रवि शर्मा से आज के प्रमुख समाचार सुनिए। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक हिस्टोरिकल न्यूक्लियर समझौते की खबर आ रही है। समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते से खाड़ी का ये देश अपना नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम डेवलप करेगा। अमेरिकी ऊर्जा डिपार्टमेंट के अनुसार ये शांतिपूर्ण न्यूक्लियर सहयोग समझौता है। इसके तहत अमेरिकी कंपनियों को सऊदी अरब के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर काम करने का मौका मिलेगा। समझौते का पूरा ब्यौरा अभी पब्लिक नहीं किया गया है, लेकिन अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक भविष्य में इसके तहत सऊदी अरब को यूरेनियम संवर्धन की इजाज़त मिल सकती है। भारत में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट के बीच कांग्रेस जनता पार्टी के मुख्य स्पोक्सपर्सन ने कहा है कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। भाई पेपर लीक का मामला जो है वो इतना व्यापक रूप से फैला हुआ है और स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसी में से ये खबर आ रही है। कांग्रेस जनता पार्टी के मुख्य स्पोक्सपर्सन सौरभ दास ने कहा है कि मैंने आज सोनम वांगचुक से कई बार बात की, उन्होंने सभी प्रदर्शन करने वालों से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें और इस प्रदर्शन को सही तरीके से करें। इस देश में पहले हुए प्रदर्शनों में सत्ताधारी दल की ओर से कुछ असामाजिक तत्वों की घुसपैठ कराएगी और फिर दोष आंदोलन पर मढ़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिल्ली मेट्रो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी दी है कि आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक कुछ मेट्रो स्टेशन वहां बंद रहेंगे। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटरी स्टेशन पर इंटरचेंज लाइन बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने पेपर लीक मामले पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के इल्जामों का जवाब दिया है। जेपी नड्डा, आपने जम्मू कश्मीर में SSB भर्ती परीक्षा के पेपर लीक का जिक्र करके सही मुद्दा उठाया है, लेकिन उसकी तारीख गलत बता दी है। ये मामला 2022 का था। भाई पेपर लीक ये जो बड़े बड़े अधिकारियों के लिए जो परीक्षाएं होती हैं तो स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करके उसमें हिस्सा लेते हैं, और जब पेपर लीक के कारण अगर एग्जामिनेशन कैंसिल किया जाता है तो उनकी मेहनत, उनका समय वो बेकार होता है। उसी को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने भी कांग्रेस जनता पार्टी की हिमायत में दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचकर अपना सहयोग दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जनता का आंदोलन है, न्याय और जवाबदेही की मांग के लिए हम सभी को एकजुट होकर इसका साथ देना चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये विश्वास दिलाया है कि पेपर लीक करने वाले अपराधियों के खिलाफ डेफिनेटली सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन साहब कुछ लोग अब प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने खासकर अपने मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी बचाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके बचाव में उतर आई है, लेकिन उनके इस्तीफे से कम किसी प्रोटेस्टर को कोई समझौता स्वीकार नहीं करना चाहिए। मशहूर एक्टर कमल हासन ने भी जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी और उसके हिमायतों की भावुक अपील की है। और भी बहुत लोग समर्थन में आ रहे हैं। पेपर लीक के खिलाफ CJP के आंदोलन पर भारतीय क्रिकेट टीम के फॉर्मर बल्लेबाज शिखर धवन भी अब प्रतिक्रिया दे रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हमारे नौजवान हमारे देश का भविष्य हैं, उनके सपनों और उनकी आकांक्षाओं को समझना बहुत जरूरी है, लेकिन मुश्किल वक्त में धैर्य बनाए रखना और देश की संस्थाओं और सरकार पर भी भरोसा रखना उतना ही अहम है। यानी शिखर धवन दोनों तरफ संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह ने लीक के दोषियों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर रिएक्ट किया है। युवाओं का हित और उनका उज्ज्वल भविष्य मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, ये संकल्प भी उन्होंने बताया। प्रधानमंत्री की ओर से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन से पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ तुरंत सुनवाई और कठोर कार्रवाई का निर्णय इस बात का प्रतिबिंब है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
3: ये है लाइका गोल्ड टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

अनूप जलोटा की आवाज से शुरू होता है ये गीत, लता जी पूरा करती हैं। प्यार को सलाम, इस उद्गार को सलाम, इस उम्र को सलाम, इस जज्बे को सलाम।

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: और मेरे भाइयों, अभी खबरों में एक खबर जो छूट गई थी लेकिन अभी वो पूरी नहीं आई है। मोहम्मद बशीर, लेटेस्ट कमिटेड जिहादिस्ट जिसने डिफेंस बेस पर अटैक करने की प्लानिंग की थी, उसको सज़ा सुनाई जा रही है। आज अभी कोर्ट की कार्रवाई पूर्ण नहीं हुई है। जैसे ही निर्णय या फैसला आएगा, नतीजा आएगा, वो भी हम अपनी ब्रॉडकास्ट में शामिल करेंगे या मुख्य खबरों में जो हर घंटे अंग्रेजी के समाचार आते हैं उनमें उसकी खबर आने की संभावना है।
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
2: Southall Travel, आप जानते हैं भाई, वो याद दिला रहे हैं आपको कि दुबई यात्रा पर लेकर के जो बातें चल रही थी अब वो हटा दी गई, यानी अब आप दुबई का सफ़र कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, वहाँ विजिट। साउथॉल ट्रेवल इज़ प्लीज टू अनाउंस दैट द FCDO हैज़ लिफ्टेड इट्स एडवाइस अगेंस्ट ऑल बट एसेंशियल ट्रेवल टू दुबई। कॉल साउथॉल ट्रेवल फॉर द मोस्ट कम्पेटिटिव दुबई डील्स। उनका फ़ोन नंबर है 0208-574-8410 and they are at all protected.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
3: Ye hai Leica Gold.
4: Leica Gold.
2: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
5: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: विजिट travelhubworld.com.
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: You know that clean, fresh feeling after brushing? Sidayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Sidayu Ayurved, that fits your life.

0: now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: Dad, Dad, Dad!
2: What's wrong, beta?
1: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
2: I will run down to the money exchange now.
1: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
2: Oi, bale, bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
1: SBI UK is regulated by the FCA and PRA.
3: Weddings, celebrations, corporate events, ragas and sab kuch. एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasun.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
4: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना. दिशा बासमती राइस.
5: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन.

0: अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड. दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
2: गारंटेड.
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल,
2: फोन 02085748410.
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410. एट ऑल प्रोटेक्टेड. श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना. परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा. 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में. समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक. नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें. शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271.
3: Search is changing.
4: Customers aren't just using Google anymore.
3: They're asking AI.
4: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
3: One business, one recommendation.
4: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
3: Will your business be the answer?
4: Or the one that got left behind?
3: The future of search has already started.
4: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
3: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
5: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट मेरा बॉयलर.com. T&Cs अप्लाई.

स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। माय नेम इज रवि शर्मा, आई एम विद यू टिल 1 o'clock दिस आफ्टरनून। ये लाइका रेडियो नेटवर्क पर लाइका गोल्ड का मनोरंजन प्रोग्राम है। ब्रिटिश घड़ियों में 11:05 हुआ चाहते हैं, वक्त हो रहा है चिंतन का। पर चिंतन से पहले भाई, मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं, क्योंकि मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस के संदेश आ रहे हैं और वह हैं सब आप सब की बदौलत। वेल भाई, अभी अभी भारत से खबर आई है कि मुझे वहाँ एक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी की ओर से विशिष्ट साहित्य सृजन और सेवाओं के लिए, हिंदी की सेवाओं के लिए, हिंदी भाषा की विदेशों में वही सेवाओं के लिए विशेष हिंदी सेवी सम्मान। ये एक अवार्ड है जिसमें 1,00,000 रुपए की राशि और एक शील्ड जो है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे एक दोस्त ने मेरी तरफ से स्टेज पर जाकर एक्सेप्ट की है। भाई, सम्मान हिंदी भाषा का है, सम्मान साहित्य का है और सम्मान सुनने वालों का है, इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू चौधरी साहब, मीना जी, गीता जी और नीलम जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तक ये समाचार पहुंच गया है और आपके बधाई संदेश आ रहे हैं। आइए आज के चिंतन की ओर रुख करें। आज के चिंतन के लिए ब्लैकपूल से अतुल जैन ने भिजवाया है आलेख और याद दिलाया है, शर्मा जी जिंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, कहते मेरी जिंदगी में भी कुछ क्षण ऐसे आए थे। हर व्यक्ति जो ऊंचाइयों को छूना चाहता है तो कभी कभी भाई उसके जहां बहुत सारे समर्थक होते हैं तो 2-4 ऐसे लोग भी होते हैं जो टांग खींचने का काम करते, नीचे गिराने का काम करते विभिन्न माध्यमों से। ऐसे ही एक आदमी का भरा पूरा फलता फूलता कारोबार तबाह हो गया। उसे लगा कि अब वो फिर से नहीं उठ पाएगा। निराशा की घड़ी में जब व्यक्ति को आसपास इधर उधर कुछ भी नज़र नहीं आता है, ऐसे में एक नेगेटिविटी का जाल सा बुनता चला जाता है। व्यक्ति सोचता है मेरा तो जीना ही बेकार है, कैसे मैं एक कर्जदार के रूप में लोगों की निगाहों का सामना करूंगा, गली से गुजरना मुश्किल हो जाएगा, सड़कों पर बाजारों में कहीं भी मुंह दिखाने काबिल नहीं रहूंगा। और ऐसे में व्यक्ति आत्महत्या की सोचता है, पर कैसे करे? आत्महत्या भाई बहुत बड़ा पाप होता है, सब जानते हैं, लेकिन उसके सिवा उसे कुछ नजर नहीं आ रहा है। तभी उसे विचार आया कि उसके गुरु ने उसे एक बार एक लिफाफा दिया था और यह कहा था कि इसको तभी खोलना जब दुनिया में तुम्हें अंधेरा ही अंधेरा नजर आए, जीने की कोई सूरत ना दिखे, जब तुम निराशा के घनघोर बादलों में अपने आप को भटकता हुआ पाओ, तो ये लिफाफा खोलना, इसमें तुम्हें कोई रास्ता जरूर मिलेगा। उसने सोचा इससे ज्यादा उपयुक्त समय कोई और हो नहीं सकता, मुझे जिंदा रहने का कोई कारण नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं ऐसे ही दुनिया से चला गया तो ये कागज़ ये लिफाफा बंद का बंद रह जाएगा। मुझे देख लेना चाहिए कि ऐसा क्या लिख कर दिया था महात्मा जी ने और कहा था कि इसको घोर निराशा के पलों में क्षणों में खोलना और पढ़ना। उसने आत्महत्या से पहले घर जाकर वो लिफाफा ढूंढा, खोला तो उसमें लिखा था ये वक्त भी नहीं रहेगा। जब अच्छा वक्त गुजर गया, जब वो सुहाने दिन नहीं रहे, तो ये निराशाजनक पल भी खत्म हो जाएंगे। बड़ी अच्छी तरह से समझा कर लिखा गया था। कोई ऐसी रात नहीं है जिसका होता नहीं सवेरा। याद रखिए बहनों भाइयों, कितने भी निराशा के क्षण आपकी जिंदगी में आए, कोई ऐसी रात नहीं है जिसका होता नहीं सवेरा, कांटों के ऊपर चलने वाले फूलों पर भी हक है तेरा। ये वक्त भी गुजर जाएगा, थोड़ा इंतजार करो, देखना बहारें फिर भी आएंगी।

रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी, भरोसा रखिए। उस व्यक्ति ने यह नोट पढ़ा और इरादा बदल लिया। जिंदगी में बदलाव आया, बदलाव आता है,

0: थॉट फॉर द डे, आज का विचार जिसके लिए आलेख ब्लैकपूल से अतुल जैन ने भिजवाया था, धन्यवाद अतुल जी। जो गीत हमने सुनवाया दैट वॉज टेकन फ्रॉम द फिल्म सोने की चिड़िया, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें शामिल थी इस गीत में। और बहन भाइयों, इसके साथ ही बधाई संदेशों का जो भाई क्या कहते हैं दौर शुरू हो गया है, मैं एक बार फिर से बता दूं किस लिए बधाइयां मिल रही हैं। मुझे सूचना तो मिल गई थी लेकिन मैं जल्दी में यात्रा नहीं कर सकता था। आज 23 जुलाई को हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति की अकादमी द्वारा आयोजित साहित्यकार सम्मान समारोह में मुझे विशेष हिंदी सेवी सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से दिया गया है। मुख्यमंत्री हरियाणा अपने हाथों से उन्होंने इनाम दिया, वो ये सम्मान दिया जिसे मेरे छोटे भाई और हरविंदर मलिक ने मेरी गैरहाजिरी में स्वीकार किया। इसके लिए मैं रवि शर्मा लाइका गोल्ड रेडियो लंदन से लाइव प्रसारण में माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह जी और हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद। मुख्यमंत्री सैनी साहब का, हरविंदर मलिक का और एक और हमारे मित्र दिनेश शर्मा जी का और भाई हरियाणा साहित्य अकादमी का भी बहुत बहुत आभार। आइए अब चिंतन को समेटते हैं और अपने मूल रंग मनोरंजन की ओर लौटते हैं। गुड मॉर्निंग।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK याद दिला रहे हैं भाई, सही मौका है पैसे भिजवाने का। भारत पैसे भिजवाना चाहें तो रेट नोट कर लीजिए। फॉर वन पाउंड दे आर गिविंग 129.11 इंडियन रुपीस, पाकिस्तानी 371.04, श्रीलंकन 449.26। क्षमा कीजिए, मैं सिर्फ भारतीय पैसे का रेट बताना चाहता हूँ। इस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके वाले दे रहे हैं 128.60 फॉर वन पाउंड, और यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। ध्यान रहे, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Leica Gold, 10:35 a.m.

0: जो कुछ होया ना तेरे कारण होया। मैं तो कहनी हाँ छड़ो की रखिया सच्ची गल्लां च। भाई गीत सुनवाते हुए जी चाहता है क्योंकि वो भारत में अवार्ड की घोषणा हुई। वैसे घोषणा तो पहले हो गई थी और उन्होंने इस इनाम के साथ 1,00,000 रुपए की राशि भी मेरे अकाउंट में डाल दी है और बहुत सुंदर शील्ड जो है तालियों की गड़गड़ाहट के बीच। अभी हरविंदर मलिक हमारे छोटे भाई हैं मेरे, बहुत बड़े कलाकार हैं वो भी, तो उन्होंने रोहतक में फिल्म सिटी है तो मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी जी ने अपने हाथों से वो अवार्ड दिया है, उनको उन्होंने मेरी ओर से स्वीकार किया। तो भाई उस बधाई के साथ साथ अब आप भी बधाई के पात्र बनिए और कंपटीशन में पार्टिसिपेट कीजिए और जीतिए 2 टिकट्स किस चीज के, लाइका रेडियो नेटवर्क टीम्स अप विद SKLPC UK नॉर्थवोर्ट में, और वहां पर भाई बैक स्टेज सिबलिंग द पाइनियर्स ऑफ भजन जैमिंग आर कमिंग। दे आर आई फ्रॉम इंडिया फॉर देयर फर्स्ट एवर UK परफॉर्मेंस। कब हो रही है, कहाँ हो रही है, नोट कर लीजिए। टेक्स प्लेस ऑन फ्राइडे 9th एंड सैटरडे 10th ऑफ अक्टूबर एट SKLPC इंडिया गार्डन्स, वेस्ट एंड रोड, नॉर्थ होल्ट। मेरा ख्याल है बहुत सारे इवेंट वहाँ होते रहते हैं और आप सब जानते हैं कहाँ है, A40 के साथ आई थिंक अपोजिट CNL कंट्री क्लब के बिल्कुल सामने बहुत बड़ा उनका भाई वो कैंपस है, वो वेन्यू है और वहाँ पर हो रहा भजन जैमिंग। और भाई आप अगर उसके 2 टिकट्स जीतना चाहते हैं तो सेंड इन द वर्ड भजन, भजन लिख करके मैं हमारे जो कंपटीशन लाइन का नंबर है 07424232323 वहाँ भेजिए, भजन लिखिएगा और उसके बाद भजन तो कैपिटल में लिख दीजिएगा, फिर अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर और अपना ईमेल एड्रेस लिखना मत भूलिए। तो भाई इसी प्रोग्राम में हम ऐलान करेंगे आगे चल करके कि कौन है विनर, लेकिन इफ़ यू डोंट विन डोंट वरी, यू परचेज टिकट्स फ्रॉम SKL लिखना मत भूलिए। तो भाई इसी प्रोग्राम में हम ऐलान करेंगे आगे चल करके कि कौन है विनर, लेकिन इफ़ यू डोंट विन डोंट वरी, यू परचेज टिकट्स फ्रॉम SKLPC.com/BSS। टिकट्स आर प्राइज्ड फ्रॉम £25। दीज टिकट्स आर वैलिड फॉर फ्राइडे 9th अक्टूबर। ध्यान रखिएगा इस कॉम्पिटिशन में जो टिकट्स जीतेंगे आप वो 9 अक्टूबर के होंगे एंड विनर्स की टिकट्स जो है दैट विल बी ईमेल्ड अक्रॉस, सो प्लीज प्रोवाइड वैलिड ईमेल एड्रेस TNC अप्लाई। तो भाई आज ये कॉम्पिटिशन शुरू हो चुका है, भजन लिख करके कैपिटल में, फिर अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस देना मत भूलिएगा क्योंकि टिकट ईमेल एड्रेस पर भेजे जाएंगे। ऑल द बेस्ट। बस बस बहुत निकली।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा।

आशा भोसले और अमित कुमार को सुनिए, और साथ साथ भाई कंपटीशन में पार्टिसिपेट कीजिए। सेंड इन भजन, नाम, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस 07424232323 पर।

0: फिर याद दिला दो भाई, कंपटीशन शुरू हो चुका है और आप अपनी एंट्री करा सकते हैं 07424-2323 पर। आपको सिर्फ भजन लिखकर भेजना है, भजन जैमिंग के कार्यक्रम के दो टिकट्स जो नॉर्थ होल्ट में हो रहा है, तो वहाँ के दो टिकट्स आपको मिलेंगे। लेकिन आपको अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर और अपना ईमेल एड्रेस भी भेजना है, भूलिएगा नहीं। और जैसे ही मिलेगा आपकी एंट्री हो जाएगी और नतीजा भी जल्दी ही निकलने वाला है। इसी बीच एक और संदेश के लायका, रेडियो नेटवर्क इज़ द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर फॉर दिवाली स्टोरी द म्यूजिकल दैट सोल्ड आउट द रॉयल अल्बर्ट हॉल एंड नाउ अराइव्स एट ओवो वेम्बली अरीना ऑन संडे 27 सितंबर। A student pre-show takes place between 5 and 5:45 p.m. लेकिन जो मेन इवेंट है वो 6:15 बजे शुरू होगा, रात 9:30 बजे तक। शानदार प्रदर्शन क्रिएटेड बाय सनातन इवेंट्स फाउंडर नितिन पालन MBE एंड फीचरिंग कोरियोग्राफी फ्रॉम द बॉलीवुड डांस स्कूल। और इसके अलावा भाई इंग्लिश लैंग्वेज प्रोडक्शन ब्रिंग्स द रामायण टू लाइफ विद अवर चैप्टर्स, a bespoke 7-song soundtrack and a full international cast. Tickets ke liye www.diwalistory.com वहाँ आप विजिट कर सकते हैं, तो भूलिएगा नहीं। ये शानदार कार्यक्रम जो है हो रहा है 27 सितंबर को वेम्बली अरीना में, वेम्बली अरीना। तो साहब ये सूचनाएं साथ साथ बताते चलेंगे और कंपटीशन में आपकी एंट्रीज को संभालते चलेंगे, विनर का नाम कार्यक्रम के अंत में बताएंगे।
1: ये है लाइका गोल्ड फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली,
2: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग। डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स। विजिट डेरीवैली.net।

0: छोरे हाँ तुम पर ना जुल्म करो, हाजिर है ये बंदा हुक्म करो।
1: बंदा हाजिर है अपने रेडियो के पास। भाई दीवानगी की हद तक रफी साहब के प्रशंसक हैं संतोष वर्मा, और ये गीत उन्हीं के नाम जा रहा है।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: Leica Gold. Leica Extra Podcast Update.
4: और भाई लाइका एक्स्ट्रा न्यू एपिसोड पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 25 लाइका प्रेजेंटर्स टेक ओवर, ये है टाइटल। कैच दिस एपिक कन्वर्सेशन विद डोनी ब्रेस्को, बाली ब्रह्म भट्ट, अनिका रूबी रजा एंड रेडियो वाली एंड अनीसा नासिर भाई, इन सबसे आप इनके रेडियो इतिहास के बारे में जानकारी ले सकेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, तो जरूर देखिएगा। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल and other major streaming platforms.
0: Leica Extra is here. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
5: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: विजिट TravelHubWorld.com।
6: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
4: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
6: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
4: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 0192-3227274। बुक योर टेबल टू।
7: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस।
8: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड, अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाउ एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड। दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस।
9: एक्सपीरियंस एन अनफॉरगेटेबल इवनिंग ऑफ टाइमलेस गजल्स, द प्रिंस ऑफ गजल, द यंगेस्ट गजल मेस्ट्रो रंजीत रजवाड़ा,
10: नजर
9: performing live in London on Thursday 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
11: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
12: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube, prime location,
11: high appreciation
12: in Dubai.
13: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड, और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
14: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
15: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
14: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
15: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
14: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
15: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath. Over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
2: राइस खरीदने का परफेक्ट टाइम आ गया है. बाय 20 केजी टिल्डा बासमती राइस एंड गेट 1.5 केजी गुलाब केनियन टी एब्सोल्युटली फ्री. मिक्स एंड मैच टिल्डा बासमती पैक्स टू मेक अप टू 20 केजीज, यानी के 4 टाइम्स 5 केजी या 2 टाइम्स 10 केजी या 1 टाइम्स 20 केजी. दिस स्पेशल ऑफर इज अवेलेबल एट ऑल क्वालिटी फूड स्टोर्स. हरी, ऑफर एंड्स व्हाइल स्टॉक्स लास्ट. क्वालिटी फूड्स, क्वालिटी और वैल्यू दोनों एक साथ.
3: मनोरंजन विद रवि शर्मा.
4: कल महान गायक कलाकार मुकेश जी की जयंती थी. दिन भर भाई उनकी चर्चा हुई, उनकी आवाज़, उनका मधुर कंठ जो है गूंजता रहा कार्यक्रमों में. ये गीत उनकी आवाज़ में गंभीर नहीं है, चुलबुला है, थोड़ा

0: सूरत आपकी।
1: भाई हमारे श्रोता याद दिला रहे हैं कि आज बृहस्पतिवार है शर्मा जी, ये झूमने गाने गिरने पड़ने बिना पिए ही डगमगाने वाले ये गीत तो आप बाकी दिनों में भी सुनवाते हैं, आज तो हमें दर्द भरे गीतों का इंतजार है और उन आँखों की अभिव्यक्ति जो बिछी रहती है किसी प्रियतम के आगमन में। भाई उन यादों का जिक्र, उन आहों का जिक्र, आंसुओं की कहानी, वो नैनों से बरसता खारा पानी, वो सुनवाइए ना। ठीक है भाई, ये गीत हमें लेकर के चलेगा 12 बजे की खबरों तक। एंजॉय कीजिए, खबरों के उस पर हमारी आपकी मुलाकात जारी रहेगी। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।

प्रोग्राम के अंतिम दौर में स्वागत है श्रोताओं का मनोरंजन प्रोग्राम ऑन लाइका गोल्ड लाइका रेडियो नेटवर्क पर। ये मनोरंजन का तीसरा और अंतिम घंटा। माय नेम इज रवि शर्मा एंड आई विश यू अ ब्रिलियंट आफ्टरनून टुडे।

बैक टू बैक संगीत में एक गीत श्रद्धांजलि स्वरूप शिव बटालवी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आज भाई उनकी जयंती है, बड़ा पिंडच 1936 ही वाज बोर्न। गंभीर स्वर जगजीत सिंह जी का।

0: मैनु तेरा शबाब ले बैठा। ये शिव बटालवी की रचना थी और जगजीत सिंह जी का स्वर था। इससे बढ़िया संयोग हो नहीं सकता। लेकिन दर्द की अभिव्यक्ति, भाई शिव बटालवी तो दर्द के कवि हैं। और आपको बता दें कि उनकी डेथ 1973 में हो गई थी, मगर उनके गीत लिखे हुए, उनकी रचनाएं जिंदा हैं। शिव बटालवी को श्रद्धांजलि स्वरूप, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। 1936 में बड़ा पिंड जगह का नाम है जहां उनका जन्म हुआ था। और भाई पंजाब में ये कवि आज भी बहुत लोकप्रिय हैं, पर के पूरे भारत में पंजाबी समझने वाले इनका सम्मान करते हैं। आज जन्मदिन मनाने वालों में कुछ और नाम भी शामिल हैं, सिर्फ फिल्मी दुनिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में जिनका भाई क्या कहें कि सम्मान है। और बड़े गर्व से भारत में चंद्रशेखर आज़ाद अगर आज दुनिया में होते तो अपना जन्मदिन मना रहे होते। भाई स्वतंत्रता सेनानी, बहुत छोटी उम्र में उन्होंने शहादत स्वीकार की। चंद्रशेखर तिवारी थे, लेकिन आज़ाद उन्होंने अपना उपनाम रखा क्योंकि वो आज़ाद थे, आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगे, ये उनका कहना था। ১৯০৬ में जन्मे थे चंद्रशेखर आज़ाद। आज ही के दिन जन्मे थे संगीतकार हिमेश रेशमिया 1973 में। और साहब एक और स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय नेता बाल गंगाधर तिलक 1856 में जन्मे थे, आज ही के दिन 23 जुलाई को। तो भाई आपके घर परिवार में भी अगर किसी का जन्मदिन है तो हमारे लाइका रेडियो नेटवर्क परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं स्वीकार कीजिएगा। और साहब याद दिला दूं कि वो कंपटीशन चल रहा है, भजन जैमिंग जो हो रही है उसके लिए अब कंपटीशन में 2 टिकट्स दिए जाएंगे। पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ भजन लिखिए और उसके बाद आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर और आपका ईमेल एड्रेस ज़रूर होना चाहिए। नंबर है 07424232323, जहां आपको ये इन्फॉर्मेशन भेजनी है। भजन ये लिखना है, फिर आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर और आपका ईमेल एड्रेस। और बहनों भाइयों जहां भेजना है वो हमारे स्टूडियो का कंपटीशन नंबर है 07424232323। ऑल द बेस्ट।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK. फिर दोहरा रहे हैं, आपको याद दिला रहे हैं कि पैसे भारत भेजना चाहें तो भाई मौके का फायदा उठाइए, अच्छा रेट है, सही समय है। टुडे दे आर गिविंग फॉर £1 दे आर गिविंग 128.6 रुपीज़, 128 रुपए और 60 पैसे एक पाउंड के बदले मिल रहे हैं। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.

0: visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208-574-8410। दैट्स 0208-574-8410। साफो ट्रेवल
2: Auto protected.
3: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beat, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
4: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
3: Jaimin Foods, Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
5: When your daughter's wedding guest list is double-sided,
6: enjoy every hand-clapping second of it.
5: Be a step ahead with Barclays Premier, with our best savings rates. Barclays, backing your future. Eligibility criteria apply. T's and C's apply.
7: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org, assuming you want to get noticed.
8: Like a Goon, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagoon.com.
9: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
10: आर्टिस्ट ऑफ द वीक इस सप्ताह की कलाकार हैं अदाकारा हेमा मालिनी। हेमा जी ने भाई अपने अभिनय की दक्षता जो है साबित की है कई तरह के रोल करके, कहीं चुलबुली चटपटी सी वही भाषा बोलने वाली, कहीं शोले में अलग लड़की और कहीं बहुत गंभीर जॉनी मेरा नाम में वो दुल्हन एक बड़ी मजबूर सी लड़की है। मुंबई में पिछले दिनों एक कार्यक्रम में उनसे पूछा गया कि धर्म जी की आपसे जो आखिरी बात थी, उन्होंने आखिरी शब्द क्या थे आपके लिए उनके, तो हेमा जी ने कहा था कि उन्होंने मुझसे कहा था परिवार को जोड़े रखना, सनी और बॉबी। हेमा जी कहती है बहुत अच्छे लड़के हैं, मेरा सारा परिवार एकजुट है धर्म जी की खुशी के लिए। भाई धर्म जी के साथ, वैसे मैं आपको बता दूं कि हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 में हुआ था और धर्म जी के साथ 2 मई 1980 को उनका विवाह हुआ। और साहब उसके बाद कितनी फिल्में उनकी पहले भी साथ साथ आ चुकी थी और उनकी जोड़ी बड़ी कामयाब जोड़ी फिल्मी दुनिया में मानी जाती है। लेकिन अब आएगी ज़रूर चिट्ठी मेरे नाम की, धर्म जी की ओर से। ये विश्वास उनका आज भी बना हुआ है कि धर्म यानी धर्मेंद्र जी दुनिया से चले गए हैं मगर उनके दिल से नहीं। आर्टिस्ट ऑफ द वीक हेमा मालिनी।

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: और बहनों भाइयों, हेमा हमारे लिए सप्ताह की आर्टिस्ट हैं। उनके गीत तो आप सप्ताह भर सुनेंगे, अभी वीकेंड तक तो कई गीत आपको सुनने को मिलेंगे, लेकिन एक गीत सुनवाते हैं आपको जो याद दिलाएगा महमूद साहब की।

0: सज रही। अरे हाँ,
1: महान हास्य अभिनेता यानी कॉमेडियन महमूद अली की आज पुण्यतिथि है। 23 जुलाई 2004 में उनकी डेथ हुई थी। शौकत हुसैन साहब याद दिला रहे हैं। शौकत भाई बहुत बहुत शुक्रिया।

0: सवाल का जवाब दो ना, बगैर माँ बाप का बच्चा कहाँ से लाए बोलो ना।
1: मंदिर पहुंचा, एक बच्चा देखा, ना कोई आगे ना कोई पीछे, मैं तरस में आके ले चला उठा के माँ को दे दूं, मंदिर में रख दूं। पंडे ने देखा वो जालिम समझा, ये पाप है मेरा बस मुझको घेरा। फिर पुलिस आई दी लाख दुहाई, वो एक न माना पड़ गया ले जाना। सोचा ले जाकर फेंकूंगा बाहर, सौ जतन लगाया कोई काम न आया, सड़कों पर बेचा गाड़ी में फेंका, बन गया ये बंदा इस गले का फंदा। मैं फिर भी टाला कचरे में डाला, फिर बारिश आई अंधियारी छाई, बिजली जब कड़की मेरी छाती धड़की, एक तीर लगा मैं वापस भागा। फिर बच्चे को उठाया गले से यूं लगाया।
2: ये महमूद की आवाज है, महमूद गाते भी थे।
1: आगे क्या बोलूं यारा, मैं पापी दिल से हारा।
2: मोहम्मद रफ़ी और महमूद साहब की आवाज़ों में ये गीत फिल्म कुंवारा बाप से लिया गया था। भाई आज महमूद साहब की पुण्यतिथि है। उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए भाई और शौकत भाई का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। याद दिलाते हैं आपको कि लाइका रेडियो नेटवर्क इज द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ द स्टेज म्यूजिकल दिवाली स्टोरी टेकिंग प्लेस एट द ओवो अरीना वेम्बली ऑन सितंबर संडे 27 सितंबर संडे। विजिट AXS और वेम्बली फॉर टिकट्स।
3: Feel Good Track brought to you by Derry Valley.
4: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
5: Ye hai Laika Gold.
6: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
2: अभी तक अगर आपने भाई कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो मैं फिर याद दिला दूं आपको कि भजन जैमिंग के दो टिकट्स हम दे रहे हैं। भजन जैमिंग्स के कार्यक्रम में जाने के लिए आपको कंपटीशन में हिस्सा लेना है तो सिर्फ इतना करना है कि भजन लिख करके हमारे जो कंपटीशन लाइन का नंबर है उस पर भेजिए। भजन लिखिएगा फिर अपना नाम लिखिएगा, भजन BHAJAN भजन या डबल जे कर सकते हैं, भजन हो जाएगा नहीं, भजन लिखिएगा जैसे भी, लेकिन अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर और अपना ईमेल एड्रेस लिखना मत भूलिएगा क्योंकि टिकट्स आपको ईमेल के माध्यम से भिजवाए जाएंगे। ऑल द बेस्ट, नतीजा निकलने वाला है।

0: क्या कर रहा हूँ?
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ू?
1: समझो ना।
0: क्या समझूं?
1: वो लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊँ?
0: आओ ना।

0: तेरी आंखों की कसम, तेरे बालों की कसम, तेरे गालों की कसम ओ सनम।
1: दिल तेरा है,
2: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
3: और साउथ ऑल ट्रेवल का वो पैगाम आपके नाम में फिर दोहरा दूं। साउथ ऑल ट्रेवल इज प्लीज टू अनाउंस दैट FCDO हैज लिफ्टेड इट्स एडवाइस अगेंस्ट ऑल बट एसेंशियल ट्रेवल टू दुबई। कॉल साउथ ऑल ट्रेवल फॉर द मोस्ट कम्पेटिटिव दुबई डील्स ऑन 02085748410 एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels, or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. This is Like a Gold.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 02087828833 और विजिट TravelHubWorld.com।
4: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट TravelHubWorld.com।
5: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
6: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
7: Packed for the trip? Gifts? Passport?
8: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
7: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
8: Simzy?
7: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
9: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.

0: Mamster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
3: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
4: और बहनों भाइयों, कार्यक्रम समापन से पहले हमें विनर का नाम घोषित करना है। भजन जैमिंग के दो टिकट दिए जाने हैं और वो दो टिकट किसको जा रहे हैं, रेडियो के नजदीक आ जाइए।

0: जीने मरने का मौसम आया भाई, अनाउंस करने का मौसम आया कि कौन है विनर। मैं पहले आपको बता दें कि किस चीज की टिकट से लाइका रेडियो नेटवर्क टीम अप विद SKLPC UK Northolt फॉर बैकस्टेज शिवलिंग्स द पाइनियर्स ऑफ भजन जैमिंग दे आर कमिंग एंड अराइव फ्रॉम इंडिया फॉर देयर फर्स्ट एवर UK परफॉर्मेंस। It takes place on Friday 9th and Saturday 10th October at SKLPC. लेकिन आपको बता दें जो टिकट हम दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ जो आज के इस प्रोग्राम में, वो 9 अक्टूबर के हैं। आपको ईमेल के माध्यम से मिलेंगे। आप बहुत सारे लोगों ने भजन लिख के भेजा, कंपटीशन की शर्त ये थी कि आप भजन लिखिएगा। भजन नहीं बनाना, भजन लिखना है BHAJAN। बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और जो विनर हैं जो जाएंगे 9 तारीख के कार्यक्रम में भजन जैमिंग का आनंद लेने के लिए, द विनर इज फॉर द 2 टिकेट्स, इट्स बीमा श्रेष्ठा। बीमा श्रेष्ठा जी, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। यू आर द विनर, 2 टिकट्स आर ऑन द वे फॉर यू टू एंजॉय द भजन जैमिंग ऑन 9th ऑफ अक्टूबर एट SKLPC Northolt।
1: ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोका नूडल्स, क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स, परफेक्ट फॉर माय बिजी डे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: और आपको मैं रेट्स बता दूं भाई, फॉर £1 एट दिस मोमेंट दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी 129.01 रुपीस, पाकिस्तानी 370.97, श्रीलंकन रुपए 448.59, बांग्लादेशी टकाज 164.86 एंड अफगान अफगानी 88.02।
4: लाइका रेडियो।
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: And the gold is trading at the rate of 98.41 pounds per gram.
3: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
5: Bhajan clubbing hype lands in London this October as Backstage Siblings take the stage for their first ever UK performance. Experience the pioneers of bhajan jamming live on Friday 9th and Saturday 10th October at SKLPC UK Northolt. Two nights you won't forget. Tickets are moving fast. Book now at sklpc.com/BSS. Exclusive radio partners, Lyco Radio Network.
6: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
7: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: Honslow. Ab India ka favorite swad bilkul aapke paas.
4: Bikaner wala. Parampara bhi. Swad bhi.
5: Bikaner wala mein enjoy kijiye famous chole bhature, raj kachori, mithai aur bahut kuch. Aaj hi aaiye 101-105 High Street, Honslow. TW3-1QT. Call kare 07487-687-885.
6: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
7: Four beers, please, garçon!
6: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
8: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
9: और बहन भाइयों, अब कार्यक्रम को समेटने का समय हो गया है, लेकिन स्टूडियो छोड़ने से पहले एक बार फिर दोहरा दो भाई धन्यवाद के शब्द, क्योंकि भारत में शुभचिंतक सुन रहे हैं। आपको याद दिलाऊं कि आज सूर्य कवि दादा लक्ष्मी चंद जी की जयंती के पावन अवसर पर दादा लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी रोहतक और हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति के अकादमी द्वारा आयोजित साहित्यकार सम्मान समारोह में मुझे विशेष हिंदी सेवी सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये किया गया है माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी जी के कर कमलों से। और इस अवार्ड को मेरे अनुज हरविंदर मलिक ने मेरी अनुपस्थिति में स्वीकार किया है। उसके लिए मैं रवि शर्मा यहाँ लंदन से लाइव रेडियो पर लाइका गोल्ड रेडियो लंदन से माननीय मुख्यमंत्री जी, हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी का भी और हरविंदर मलिक, दिनेश शर्मा, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो सभागार में मौजूद इस भाई सम्मान के साक्षी बने हैं। हरविंदर ने स्वीकार किया है, बहुत बहुत धन्यवाद।

नवाजिश, करम, शुक्रिया, मेहरबानी, मुझे बख्श दिया आपने जिंदगानी। और भानु भाई उसके साथ ही रवि शर्मा को अभी इजाजत दीजिए। हैव अ सुपर्ब डे, बाय बाय।

0: आशा भोसले इन सौदागर फिल्म.
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड. रेमिनिस दोज क्लासिक्स.
0: दैट वाज सौदागर 1973. आशा भोसले जी ब्यूटीफुली संग. सजना है मुझे सजना के लिए. यह है लता मंगेशकर जी. फिल्म है अभिलाषा. 1968 की फिल्म है. एंड स्टिल गोइंग एवरग्रीन ऑन लाइक अ गोल्ड. आर डी बर्मन का संगीत है. मजरू सुल्तानपुरी की.

0: गारे गारे
1: जरा बड़े दे
0: गारे गारे
1: ये सूर बदल
0: गारे गारे
1: ये हमक बटवा
0: गारे गारे
1: ये सूर की तरह दिए ये सूर ये इन्ना आया है तो ये
0: एक चतुर नार हम छोड़े नहीं
1: एक चतुर नार हम पकड़ कर रखेगा जे।

0: घोड़ा चतुरा घोड़ा, ये क्या रहा घोड़ा चतुरा घोड़ा चतुरा, एक पैर है ना, या घोड़ा बोला या चतुर बोला, गा
1: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत जात।

0: किसी के कितने लोगों को पूछा इसका मीनिंग क्या है, और कुछ लोगों ने बोला कि इट मींस आप आ रहे हो पर्ल हंटिंग के लिए। ओ पर्ल हंटिंग जो होता है इट्स ऑन अ बीच, फिशरमैन की लैंग्वेज में। सो मुथु कुलिथाई दैट इज पर्ल हंटिंग।
1: दो दिलों की।
0: महमूद साहब एक रोते हुए बच्चे को चुप करना चाहते थे तो बोलते कि मैं लोरी सुनाता हूँ, लेकिन वो ज्यादा रोने लगा। इतना रोता है, क्या होता है सुनते रहिए।
1: फूफा के भतीजे लोरी लोरी लोरी

0: जान ले तू, ये भी अब जान ले तू, जान ले तू, जान ले तू। थाकी गयो फरी पर नहीं समझ तो बेशरम। हाँ, अब भी अगर तू चुप न हुआ तो तोड़ दूंगा ठोबरा तेरा।
1: Hope you enjoyed this particular song.
2: Feel good classics all day. Like a gold.
1: And this is one of those beautiful numbers jisme music director the Manorida unke partner ke sath.

0: शंकर जयकिशन ने आंखों आंखों में 1972 में ये म्यूजिक दिया था, हसरत जयपुरी की लिरिक्स। लेकिन सेम सिंगर्स किशोर कुमार और आशा भोसले, सेम टाइटल आंखों आंखों में वो कल्याण जी आनंद जी ने कंपोज किया आनंद बख्शी की लिरिक्स के साथ, वो सुनिए। वाओ व्हाट अ सॉन्ग दैट इज।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Ji haan, same title aankhon aankhon mein, lekin ye film Mahal ka gana Kalyan ji Anand ji ne jo compose kiya, same singers Asha Bhosle, Kishore Kumar, आनंद बख्शी की लिरिक्स आंखों आंखों में।

ताली तक धीमी तक ताली तक जमी तक झाला आंबो तक झुगी तक ताजी गेन तक नक तक झुमी तक नक नक झुमी तक नक नक झुमी तक नक नक झम तारिता जग तारिता झन जाने को गुदारी दाबो तारी गेटे ताली झम तारिता जग तारिता झन जाने को गुदारी दाबो तारी गेटे झम तारी जग तारी जग नक नक ता झिन ता झिन ता झिन ता झम तारी जग तारी जाने जाने को

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। No, really, I mean it. और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना.
2: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
1: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
3: मॉम ऑलवेज सेड बेटा क्लोव एंड नीम कीप द माउथ हेल्थी. नाउ दैट सेम ट्रस्टेड विजडम कम्स फ्रॉम बैद्यनाथ, ओवर 100 इयर्स ऑफ आयुर्वेदिक लेगेसी इन सिद्धायु toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
4: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
5: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK. Sonatours.co.uk, 14 days, Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of July and get 600 off. Call Sonatours on 0208-951-0111.
6: Like a Gold, London का number one Asian retro music station, अब available है Greater London में 10:35 AM पर DAB Digital Radio पर. Alexa पे बोलो play Like a Gold और online सुनो likeagold.com पे. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
7: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: झूठ बोला सैंडी शाह ने झूठ बोला
3: ऑन गोल्ड ड्राइव.
4: सो थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर एवरीवन हुज टेकन पार्ट सो फार ऑन झूठ बोला. एंड सो इट्स योर लास्ट चांस. हैव अ गो इफ यू हैव नॉट हैड अ गो. इफ यू हैव नो आइडिया टेक अ गेस, बट प्लीज डोंट लुक इट अप फर्स्ट. व्हाटएवर यू डू, यू कैन चेक इट आफ्टर आई हैव गिवन यू द आंसर. एंड इफ यू गॉट इट राइट, यू आर गोना बी हैप्पी, आरंट यू? देयर यू गो. सो द टू स्टेटमेंट्स आर, ऑस्ट्रेलिया इज एज वाइड एज द मून. And B, in summertime, human nails grow faster. What am I lying about?
0: WhatsApp message Like a Gold now on 0744-232323. Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics.
5: मैं हूं अश्विनी. हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइक अ गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी. फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग आप सभी के लिए.

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
1: It is indeed, and the Leica Radio Network is the exclusive radio partner for Diwali Story. The musical that sold out the Royal Albert Hall and now arrives at the Over Wembley Arena on Sunday the 27th of September. A student pre-show takes place between 5 PM and 5:45 PM. The main event is from 6:15 till 9:30 PM. It's been created by the Sanathan Events founder Nathan Palin, MBE, and features choreography from the Bollywood Dance School team. The English language production brings a reminder to life with 4 chapters, bespoke 7-song soundtrack, and a full international cast. If you're looking for tickets, go on to www.diwalistory.com.
2: This is Sandy Shah on Gold Drive.
3: Ye hai Leica Gold.
4: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
5: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड
5: विजिट travelhubworld.com
6: Dad,
7: what's wrong, beta?
6: The Indian rupee has skyrocketed, and it's the best time to send money to Daddy in India.
7: I will run down to the money exchange now.
6: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app, and you'll get a fast service right from your phone.
7: Oi, bale bale! I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
6: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
8: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है? इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश हिंदी गुजराती मराठी तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344 लाइन
9: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर
10: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना 5-course लंच सिर्फ £35 जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड तो देर किस बात की बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 0730098823
11: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
12: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
11: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
12: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
11: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
12: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com लिमिटेड ऑफर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
13: Looking for great value on quality flour? Head to your nearest quality food store today. Falcon Chakki Atta 10kg is now available for an amazing price of just £7.99. Perfect for soft rotis, chapatis and everyday cooking. Don't miss this fantastic offer. Falcon Chakki Atta 10kg is only £7.99 exclusively at quality food stores. Rice khareedne ka perfect time aa gaya hai. Buy 20kg Tilda Basmati rice and get 1.5kg Gulab Kenyan tea absolutely free. Mix and match Tilda Basmati packs to make up to 20kgs. Yani ke 4 times 5kg, ya 2 times 10kg, ya 1 times 20kg. This special offer is available at all quality food stores. Hurry, offer ends while stocks last. Quality foods, quality aur value, dono ek saath.
14: Hello London, the wait is over. Kalyan Jewelers invites you to the grand opening of our spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park this July 31st. Kalyan Jewelers, also at Belgrave Road, Leicester.
2: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
15: Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics.
2: On this week's Leica Extra podcast, Leica Radio Network presenters get candid about films, lifestyle and controversies.
16: You have to be really dedicated to be able to
17: become a
16: radio presenter. Yeah. So you're giving sacrifices around you as well.
17: True.
16: Whether it's at home or whether it's family.
2: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Sounding better than ever in the sunshine. This is Leica Gold.

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410। दैट्स 0208574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
3: Hey, friends के साथ weekend party हो या खुद के साथ Netflix and chill, a desi tadka is total risk, है ना?
4: Well, she is talking about Jaimin Food potato chips, crunchy, tasty and total desi swad in char mazedar flavors.
3: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
5: Sonatours.co.uk Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of July and get up to 400 off. Call Sonatours on 0208 951 0111.
6: Hello.

0: ता हूँ मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: भाई जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइक अ गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी एंड पहले आवर का आगाज हमने किया 90s और 80s के बच्चे खुश हो गए। 90s से हमने लिया था आशिकी फिल्म से जाने जिगर जाने मन, अनुराधा पौडवाल एंड कुमार सानू की आवाज में। एंड इसके बाद ओहो मतलब उफ वाला गाना था दर्द फिल्म से, दर्द है तो उफ तो होगा दर्द फिल्म से आशा भोसले एंड किशोर कुमार की आवाज में लिया था वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक्स प्यार का दर्द है। अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है, हमारे सारे प्यारे प्यारे लिसनर्स अराउंड द ग्लोब अपनी अपनी हाजिरी लगा रहे हैं, तो थ्रिलिंग थर्सडे में आइए जी, स्वागत है आप सबका। पूछे आप सबसे कैसे हैं आप सब, बढ़िया है ना? आई नो आज फिर से जरा धूप, इतनी धूप नहीं थी लेकिन गर्मी ज़्यादा है, कोई ना बस 20s में आ गए वापस, कोई फिक्र ना। चलिए अभी अच्छा बिल्कुल बढ़िया सा माहौल होगा शाम 7 से 10 बजे तक, क्योंकि आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी। तो हमेशा की तरह एक सवाल पूछने वाली हूँ मैं आप सबसे, क्या सवाल पूछा जाए या क्या किया जाए? ओके चलिए, तो देखिए हमारी ज़िंदगी में जो भी अपनी लाइफ है, जितनी भी अभी आपकी उम्र है, तो आपकी इस उम्र में आपको बचपन से लेके जवानी से लेके बुढ़ापा लेके जो भी आप है, तो कोई ना कोई आपके लाइफ में एक ऐसा इंसान होगा जो कंजूस होगा या कंजूस होगी, ओके स्टिंजी। अब क्या ही इनकी मंशा होती है इसके पीछे हम तो नहीं जानते, है ना? तो भाई हमारी लाइफ में, मेरी लाइफ में बिल्कुल ऐसे ही 2-3 जान पहचान के लोग हैं, कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते उनके बारे में, लेकिन यस है। एंड मुझे ना सिर्फ ये एक बार समझना है कि अब एक तो ये सवाल कैसे पूछा जाए कि भाई आप इतने कंजूस क्यों हैं, क्या बहन आप इतनी कंजूस क्यों हैं, पूछ भी नहीं सकते, बट ये समझना ज़रूर चाहूँगी कि क्या वो चीज़ है जो इन्हें यू नो दूसरों के लिए खर्चा करने से बचाती है। अपने लिए खूब खर्चा करते हैं लेकिन दूसरों की बारी जब आती है तब हाँ जान पहचान हो, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी जान पहचान ना हो। चलिए बताइए, हमेशा की तरह एक लाइफ थियरी, बहुत सुंदर लाइफ थियरी लेके आई हूँ, थोड़ी देर में बात करेंगे उसके बारे में भी।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 128 इंडियन रुपी एंड 30 पैसे। डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और एसबीआई योनो मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: The Evening Show with Ashwini.

0: द इवनिंग शो विद अश्विनी।
1: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, एक बार देखते हैं टाइम कितना हुआ है। 7:29। इट्स 7:29। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। हर रोज नियरली इस टाइम पे आप और हम बात करते हैं जिंदगी की किसी थियरी के बारे में। छोटी सी थियरी लेकिन कहीं ना कहीं शायद आपको सोचने पे मजबूर करेगी ये थियरी, द पॉज थियरी। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे अपने लंदन शहर का। हमारे यहाँ पे टॉटन कोर्ट रोड स्टेशन जो है, ओके, टॉटनहैम कोर्ट रोड, ये जो स्टेशन है यहाँ पे, जैसे हम स्टेशन के बाहर निकलते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी सी एलईडी स्क्रीन्स लगी हैं। और वो स्क्रीन्स जहाँ पे लगी है ना, वो इतनी ह्यूज और इतनी जायंट है, एक्चुअली जायंट ही है वो। तो वो स्क्रीन्स जहाँ पे लगी है वहाँ पे ना, उन्होंने कुछ ऐसे पत्थरों के ऐसे बेंचेस बना रखे हैं कि आइए वहाँ पे बैठिए और उसे देखिए। छोटे बच्चों से लेके बूढ़े इंसान तक, सब के सब जब स्टेशन से बाहर निकलते हैं वहाँ पे बैठते हैं, वहाँ पे जो भी स्क्रीन पे चल रहा है उसे एंजॉय करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। कई लोग तो ज़मीन पे लेट जाते हैं क्योंकि ऊपर सीलिंग पे भी कुछ ना कुछ वीडियोस चलती रहती हैं इन स्क्रीन्स पे। लोग मुस्कुराते हैं, कुछ लोग बहुत गहराई से सोचने लगते हैं, कुछ लोगों के चेहरे पे बस एक पीसफुल स्माइल होती है, कुछ लोग रिलैक्स होते हैं। तो ये देख के मुझे ध्यान में आया कि भाई ज़िंदगी में एक पॉज कितना ज़रूरी है ना हम सब के लिए। वो जो जायंट स्क्रीन है ना, वो आपको कह नहीं रही कि यहीं पे रुक जाओ, वो कह रही कि पॉज लो। आप जितनी दौड़ भाग कर रहे हो, जिस चीज के पीछे इतनी मेहनत कर रहे हो ना, करते चलो, कोई दिक्कत नहीं। अपने गोल्स, अपने टारगेट्स, भागिए उनके पीछे, मेहनत करिए यार, जिंदगी है, एक ह्यूमन लाइफ मिली है, बिल्कुल कस के मेहनत करो और अपने अपने गोल्स तक पहुंचो। लेकिन पॉज तो ले लो, रुक जाओ, कभी कभी ये ठहराव बहुत जरूरी है। और जब ये ठहराव आप ले लेते हैं ना, एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा के साथ में फिर आप निकल पड़ते हैं आगे की जर्नी के लिए। और ये ख्याल मुझे आया जब मैं खुद जाके वहाँ पे टॉटनहैम कोर्ट रोड स्टेशन पे जाके रुकी, जब मैंने जायंट स्क्रीन्स देखी, मैंने कहा अरे ये तो सचमुच ठहराव के लिए है, पॉज के लिए है। तो क्या आप भी जब ज़रूरी है तब पॉज ले रहे हैं या नहीं, या पॉज भी ले रहे हो कि नहीं, ये सवाल है। हाँ, मुझे आंसर मत बताइए, ये अपने आप के लिए आंसर। तो कैसी लगी ये मेरी बनाई हुई द पॉज थ्योरी, जरूर बताइएगा। एंड चलते हैं अगले गीत की तरफ।
2: Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट। Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Leica Gold and Leica Radio Midlands from 1 PM to 4 PM।

0: Days for London at Breakfast and Drive. The Evening Show with Ashwini.
1: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
2: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
2: विजिट TravelHubWorld.com. Start.

0: वेलकम, दिस इज द सेकेंड आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी. क्या फैंटास्टिक ट्रैक्स थे ना, मजा आ गया आप सबको. अनुराधा पौडवाल की आवाज में दिल है कि मानता नहीं इस फिल्म से सुनाया पहला गीत, एंड समुंदर फिल्म से आहा, मतलब मैंने कहा था ना आपको पहले, उफ वाले गीत चलने वाले हैं आज. इट्स अ थ्रिलिंग थर्सडे, आप और हम मना रहे हैं शाम 7 से 10 बजे तक द इवनिंग शो विद अश्विनी आता है मंडे से लेके फ्राइडे तक. जो अभी समय बताया जी, वही 3 घंटे शाम 7 से 10. तो पोयम सुनना है आप सबको? बिल्कुल सुनाते हैं, सुनाते हैं. पहले पैसों की बात करते हैं.
1: Like a radio network. Money talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 128 इंडियन रुपी एंड 30 पैसे. डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स. विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच. टीस एंड सीस अप्लाई.
0: अच्छा, एक प्रॉमिस करिए, ये पोएम सुनते सुनते आप सब मुस्कुराएंगे. हाँ, मैं रेडियो में से देख लूंगी आके आप लोग मुस्कुरा रहे हो कि नहीं. क्योंकि इस कविता का नाम, इस पोयम का नाम है मुस्कुरा गए. एंड शायद आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि मुस्कुराते मुस्कुराते ही मैंने ये पोयम लिखी होगी. बिल्कुल वैसे ही हुआ था. सो कुछ इस तरह मुस्कुरा दिए हम, कुछ इस तरह मुस्कुरा दिए हम कि गम भी मुस्कुरा दिए. पहलू में अपने छुपा के दर्द को दवा बना गए. मुस्कुराने की अदा शायद पहले से थी हम में, मुस्कुराने की अदा शायद पहले से थी हम में. पछताओगी हंस के, कह दिया गम ने. हमने कहा सुनो ना दोस्ती कर लो हमसे, मुस्कुराने की अदा सिखा देंगे कसम से. उफ क्या दीवानापन तुम्हारा, लो चल दिए हम सफर पे. गलती हुई माफ करो, तुम रहो अपने चमन में. तुमसे जीतना आसान नहीं समझ लिया हमने, तुम्हें रुलाना आसान नहीं मान लिया हमने. इतना कह के गमों ने नापा अपना रास्ता, इतना कह के गमों ने नापा अपना रास्ता. क्योंकि जानता है गम, हमें तो बस मुस्कुराने से है वास्ता. कुछ इस तरह, कुछ इस तरह मुस्कुरा दिए हम कि गम भी मुस्कुरा दिए. पहलू में छुपा के अपने दर्द को दवा बना गए. सच्ची बताना, मुस्कुरा रहे थे आप लोग सब? अब जब मुझे इमोजीज आएंगे स्माइली वाले और आपका फीडबैक आएगा तब पता चलेगा ना. नेक्स्ट ट्रैक आप सबके लिए लता मंगेशकर की आवाज में, सेहरा फिल्म से.
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ready for some good news about motoring costs? Get 10% off Tesco car insurance. Use your Tesco Club card when you buy or renew a car policy with Tesco Insurance and save 10% with Club Card prices. There's a range of cover options. And get this, we've even been named a Which? Best Buy 2026 for our gold car insurance cover. To save your 10%, search Tesco Car Insurance and get your quote today. Club Card required. Excludes add-ons. T's and C's apply.
3: The Evening Show with Ashwini.

0: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara. Performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
2: डैड,
3: व्हाट्स रॉन्ग बेटा?
2: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
3: I will run down to the money exchange now.
2: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
3: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
2: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
1: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271।
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
5: गारंटेड
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
5: फोन 02085748410।
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: Minar Jewelers Best Overall Business of Wandsworth 2026. Come and find out why. 24 karat gold bars and coins without VAT at the lowest prices. Phone 0208-767-7547.
7: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
8: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
0: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: चलिए मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। 8:34, इट्स 34 मिनट्स पास्ट 8। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। हाँ जी, तो कल हमने किया था एक कॉम्पिटिशन, लेकिन आज अभी मेरे शो में ये कॉम्पिटिशन नहीं है। सो लाइका रेडियो नेटवर्क टीम्स अप विद सिफत इवेंट्स एंड सोलजम लंदन फॉर अ नाइट ऑफ डिवाइन सोलफुल म्यूजिक विद प्रिंस ऑफ गजल्स रंजीत रजवाड़ा। इट्स टेकिंग प्लेस एट हैरो आर्ट सेंटर थर्सडे, यानी कि अगले गुरुवार को 30 जुलाई शाम 7 बजे। तो अगर आपने टिकट्स नहीं जीते तो कोई बात नहीं जी, टिकट्स प्राइस्ड हैं फ्रॉम £25। हमारे रेडियो का नाम ले लीजिए लाइका रेडियो, तो वहाँ पे आपको 10% डिस्काउंट ज़रूर मिल जाएगा जब आप टिकट्स ऑनलाइन बुक करते हैं। ज़रूर जाइएगा हैरो आर्ट्स सेंटर पे July 30th शाम 7 बजे। एंड अब ज़रा फटाफट इमोशन ऑफ द डे, थ्रिलिंग थर्सडे। सो ये गीत आप सबके लिए मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
0: द इवनिंग शो विद अश्विनी।

0: इमोशन ऑफ द डे,
1: इमोशन ऑफ द डे।
2: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
3: पॉडकास्ट एपिसोड 25 आ चुका है, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लाइका प्रेजेंटर्स की पूरी टीम आई है एंड लाइका प्रेजेंटर्स टेक ओवर। अभी सबकी कॉन्वर्सेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। डॉनी ब्रास्को, बाली ब्रम्बर्ट, अनिका रूबी रजा रेडियो वाली एंड अनीसा नासिर, सब ने अपने अपने चैलेंजेस बताए हैं जब वो रेडियो प्रेजेंटर्स बने हैं। कहाँ किसकी लाइफ में क्या ग्राफ चलता रहा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, ज़रूर सुनिएगा। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग platforms.
4: Like extra is here. The evening show with Ashwini.
5: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
6: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
7: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: विजिट travelhubworld.com।
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies. To trade, visit heraldplastic.com.
9: भजन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है। बैकस्टेज सिबलिंग्स परफॉर्म लाइव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द यूके। जॉइन द पायनियर्स ऑफ भजन जैमिंग ऑन फ्राइडे द 9th एंड सैटरडे द 10th ऑफ अक्टूबर एट SKLPC नॉर्थोल्ट। एक शाम सोलफुल म्यूजिक, डिवोशन और एनर्जी के नाम। टिकट्स बुक कीजिए ऑन SKLPC.com/BSS। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क।
10: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
11: Mango season has arrived. Here also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
10: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
12: Sonatours.co.uk Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of July and get up to 400 off. Call Sonatours on 0208-951-0111.
13: Lyca Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Lyca Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at lycaradio.com and the Lyca Radio mobile app. Ashwini, brightening up your weeknights.

0: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 47 मिनट्स पास्ट 8। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। हमारे बड़े ही प्यारे लिसनर हैं बॉबी जी, जिनके कलीग हैं सुनील साहब, उनका है बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे टू यू सुनील जी, आपके कलीग बॉबी जी की तरफ से और हमारे लाइका गोल्ड रेडियो की तरफ से, मेरी तरफ से। भाई बर्थडे जो हैं बहुत स्पेशल रहते हैं हर इंसान के लिए, एंड वी विश यू एक्सेलेंस, कीप शाइनिंग, कीप एक्सेलिंग इन लाइफ। व्हेन इट कम्स टू बर्थडेज, ऑब्वियसली आज मेरी बड़ी बहन का भी बर्थडे है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है बर्थडेज के बारे में बात करना। एंड कभी कभी होता है ना कि फैमिली में बैक टू बैक सबके बर्थडेज आ जाते हैं, कि दो तीन दिन जैसे बर्थडे महोत्सव चल रहा हो, एनिवर्सरी महोत्सव चल रहा हो, ऐसे होता है फैमिलीज में कई बार सबके बर्थडेज आते हैं साथ में, हैप्पी मोमेंट्स होते हैं। अब कई लोग जिनको मैं जानती हूँ, दे डोंट बिलीव इन सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडेज, पता नहीं क्यों। एक साल ज़्यादा हुआ, एक साल कम हुआ, अभी ये कैलकुलेशन हर इंसान अपने हिसाब से करते रहता है, क्योंकि हर इंसान का अपना एक नज़रिया होता है हर चीज़ के लिए, चाहे कोई भी चीज़ रहे। सो हम सब जो हैं, जैसे हमारा नेचर होता है, उस हिसाब से हम बिहेव करते रहते हैं। और देखिए ना, गाने भी कितने अमेजिंग हैं, कितनी बार गानों के लिरिक्स जो हैं ये हमें समझाते हैं कि हमारा अपना नज़रिया कैसा है। कई बार होता है ना, आप गाने सुन के, अरे ये तो मेरे दिल की बात थी, अरे ये तो मेरे मन की बात थी, है ना, ऐसा हो जाता है। तो बस वही होता है यहाँ पे शो पे। दिस इज़ द इवनिंग शो विद अश्विनी, मंडे से लेके फ्राइडे शाम 7 से 10 सुनते हैं इस शो को आप। और इस आवर का आखिरी गीत और भी बढ़िया सा गीत है, सुनाएंगे बात अभी और बाकी है दोस्तों।
1: ये है लाइका गोल्ड। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: For £1, you'll get 128.96 Indian rupee, 369.98 Pakistani rupee, 447.4 Sri Lankan rupee, 164.49 Bangladeshi taka, 87.74 Afghani, 172.39 Kenyan shilling, 1.33 US dollar, 62.82 Mauritian rupee.
2: Laika Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Laika. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Laika Gold, a part of the number one Asian commercial radio network in Greater London. The Laika Group. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £97.84 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
0: मुकेश जी की आवाज़ में आप सभी को सुनाया था जिस देश में गंगा बहती है, 1960 में ये फिल्म रिलीज हुई थी एंड राज कपूर जी पे ये फिल्म आया गया था शायद, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग जी। तो कल होगा फ्राइडे, फैंटेस्टिक फ्राइडे, मतलब कैलोरीज बर्न करने वाला दिन। कंटिन्यूस ऐसे सॉन्ग्स बजते हैं इस शो पे जहाँ पे आपके पैर थिरकते रहते हैं, अभी नहीं थिरक रहे पैर ऐसी बात नहीं, लेकिन आप डांस करने लगते हो, दैट इज़ फैंटास्टिक फ्राइडे फॉर ऑल ऑफ यू। तो कल जल्दी जल्दी खाना वाना खा के फिर शो ट्यून इन करिएगा, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि खाना खाते खाते डांस भी कर रहे हैं और खाना भी कर रहे हैं, है ना। अब इस आवर का आखिरी गीत दोस्ताना फिल्म से सुना रहे हैं आपको, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार की आवाज़ में, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। तो लोगों की ज़िंदगी में दोस्ती बहुत महत्वपूर्ण है, उन लोगों की लाइफ में जिनके दोस्त होते हैं। आई एम तो ब्लेस्ड विद फैंटास्टिक फ्रेंड्स इन माई लाइफ, एंड दोस्ती इतना ब्यूटीफुल रिश्ता है ना, मुझे लगता है दोस्ती में ना हम सामने वाले को बदल नहीं जाते, वो जैसा है ना वो इंसान, उसको हम वैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाकी रिश्तों में हम लोग क्यों नहीं करते ऐसे, दोस्तों की तरह जो होता है ना कि दोस्त में मस्ती चल रही है, ठिलवईगिरी चल रही है, टांग खिंचाई चल रही है, लेग पुलिंग, और उसमें बुरा लगता भी नहीं है, पर बाकी रिश्तों में क्यों लगता है, सोचिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए आइडियली। चलते हैं आखिरी गीत की तरफ।
1: Reminisce those classics on Laika Gold. The Evening Show with Ashwini.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
3: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
5: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
3: Anuj Chopra Foundation proudly presents An Evening of Elegance, hosted by Anisa Nasir. Taiyar ho jaiye ek yaadgar shaam ke liye, jahan ghazals milti hai Bollywood se.
6: Shaam chalne lage.
3: With the legendary Anoop Chalota on Sunday, 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 p.m. Show starts 6 p.m. Ticket starts from £40. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners, Laika Radio Network.
7: Chawal ho best, sab kare test. Disha rice ka hai zamana.
8: Disha Rice, now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash & Carry, Singsbury's, Kachha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save Kent.

0: 2025 or visit meraboiler.com. T's and C's apply.
1: South Hall, Desi Swad ka asli adda aa gaya hai.
2: Bikaner wala parampara bhi.
3: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स. आइए 60 किंग स्ट्रीट, साउथ हॉल, UB2 4DB. कॉल 0779518101.
4: डाउनलोड द लाइका रेडियो मोबाइल ऐप, लिसन लाइव एंड लिसन बैक टू योर फेवरेट शोज.
5: द इवनिंग शो विद अश्विनी.
4: Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile app.

0: वेलकम, दिस इज द थर्ड आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी। इस आवर का आगाज हमने किया था बरसात फिल्म का, जो गीत नहीं ये हो नहीं सकता, कुमार सानू एंड साधना सरगम की आवाज़ में। उसके बाद मन चली किशोर कुमार एंड आशा भोसले की आवाज़ में बरसात के एक रात से लिया था ये गीत। अब इस आवर में गज़ल या कव्वाली में क्या सुनाने वाली, आप लोगों के मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं। आप लोगों के बैक टू बैक मैसेजेस आते रहते हैं जब हम गीत प्ले करते रहते हैं, और किस तरीके से ये गीत आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये भी आप बताते हैं। ये देखिए, यही तो मज़ा है म्यूज़िक का, कि म्यूज़िक हमारे साथ साथ निरंतर चलते रहता है। हम अपने काम काज भी करते रहते हैं और पीछे म्यूज़िक जो है हमें अच्छे पॉजिटिव वाइब भी रखता है, और हमारे विचार जो हैं नेगेटिविटी की तरफ नहीं दौड़ते।
1: Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 128 इंडियन रुपीस एंड 30 पैसे। Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.

0: सरस्वती चंद्र से सुनाया आप सभी को ये गीत मुकेश जी की आवाज में, आर्टिस्ट ऑफ द वीक हेमा मालिनी, उनकी एक फिल्म का गीत सुना रहे हैं आपको, एंड दिस ट्रैक आप सब बहुत पसंद करेंगे, किशोर कुमार की आवाज में अंदाज फिल्म से जिंदगी एक सफर।
1: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना, परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा, 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में, समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक, नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद ले। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271।
2: Dad,
3: what's wrong, beta?
2: The Indian rupee has skyrocketed, and it's the best time to send money to Daddy in India.
3: I will run down to the money exchange now.
2: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app, and you'll get a fast service right from your phone.
3: Oi, bale bale! I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
4: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
5: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
6: No more worries for me.
7: Southall Travel, at all protected.
8: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara. Performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
9: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
10: Like a Gold, London का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर, DAB डिजिटल रेडियो पर, एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे।
11: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: व्हाट अ फैंटास्टिक ट्रैक, अंदाज फिल्म से सुनाया आप सभी को ये गीत, फिल्माया गया था राजेश खन्ना एंड हेमा मालिनी पे। गजल या कव्वाली में क्या सुनाने वाली, तो नेक्स्ट आ रही है गजल जगजीत सिंह की आवाज में सरफरोश फिल्म से।
1: ये है लाइका गोल्ड,
2: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।
3: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
4: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
5: Ghazal.

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: For £1, you'll get 128.95 Indian rupee, 370.1 Pakistani rupee, 447.42 Sri Lankan rupee, 164.49 Bangladeshi taka, 87.74 Afghan Afghani, 172.42 Kenyan shilling, 1.33 US dollars, 62.82 Mauritian rupee.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, poojasweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £97.88 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, poojasweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
1: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ। इट्स 46 मिनट्स पास्ट 9। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। थ्रिलिंग थर्सडे मनाया आपने और हमने साथ में। गोल्ड नाइट्स हमारी ओवरनाइट सर्विसेज जरूर सुनिएगा। लाइका रेडियो 90s, लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका गोल्ड 2। हमेशा की तरह यही कहेंगे भाई कि प्यार जिंदगी में बहुत अहम है, तो प्यार दो, प्यार लो, एंड पावर तो किसी को बर्बाद करने के लिए चाहिए। आई एम श्योर आप में से कोई भी अपने पावर का यूज़ नहीं करता होगा। लाइफ बहुत बहुत सुंदर है, उसे कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए। कम्युनिकेट करें, नोबडी कैन रीड योर माइंड, है ना। तो जो भी अपने दिल में बात है कहिए, बैठिए, उसे सुलझाइए। रिश्तों को तोड़िए मत, क्योंकि रिश्ता तोड़ना बहुत आसान है लेकिन जोड़ना फिर से बहुत मुश्किल है। कल है फैंटास्टिक फ्राइडे, तो तैयार हो जाइएगा अपनी कैलोरीज बर्न करने, खा पी के डांस मस्ती के लिए ऑन फैंटास्टिक फ्राइडे विद द इवनिंग शो अश्विनी के साथ में। गुड नाइट, लव यू ऑल।
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: Like a gold.
1: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara. Performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
2: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
3: लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन।
4: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02039635. 757 Greens by Danube, prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
5: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
6: You know how fans shout at football matches?
7: Oh, wake up!
6: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too, because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
1: Sari Raat, Bollywood classics ka saath, sirf Leica Gold par.

कह गए गंगाराम हो मेरा, तुझे भी सलाम मेरा, तुझे भी सलाम, हम तेरे हैं गुलाम, हम तेरे हैं गुलाम।

मेरा तुझे भी सलाम, मेरा तुझे भी सलाम, मेरा तुझे भी सलाम, मेरा तुझे भी सलाम।

0: लाइका गोल्ड।
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड।
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: साउथ हॉल ट्रेवल
2: 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: My fans shout at football matches.
5: Oh, wake up!
4: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
6: Are we there yet?
7: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
6: Relax, I've booked the Uber already.
7: How? My roaming isn't even working yet.
6: I switched to Simsy before we left London.
7: Simsy? Since when are you the tech expert?
6: Since I decided I want a stress-free holiday.
8: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
9: T's and C's apply.
10: रात भर न थमे न रुके क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर